ohina sabha anuhi sama tripurani taru edita sakala sansar kaushik suno banda ehman kutila kala vasani jakula ghal tum hat kahu jo chaho ubara kahin tap bal rosho hamara sur samad karani karahi kahin janab hi aap vidyaman ran payadi kayar karahi pralap परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु नकुल हि प्रसंसि कालहु डरहि न रण रघुवंशि विप्रवंश के असि प्रभुताई अभय होइ जो तुमहि डराई सुनि विदुगुण बचन रघुपति के उघरे पटल पर